ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 1 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई की 3 दिवसीय भारत यात्रा बुधवार से शुरू हो गई है। वे बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। दोनों के बीच सीएनजी वाहनों में बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के एक नए ढांचे पर सहमति बनने की उम्मीद है। गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य भारत के कृषि प्रधान गांवों को बढ़ावा देते हुए जापानी वाहन निर्माताओं के लिए बाजार का विस्तार करना है। दोनों देश मिलकर भारत में 1000 स्थानों पर बायोगैस संयंत्र लगाएंगे और बायोगैस उत्पादकता में सुधार के लिए अनुसंधान तथा विकास करेंगे। जापान में कारोबार पर पैनी नजर रखने वाले तांकान सर्वेक्षण से पता चला है कि लगातार 5वीं तिमाही में प्रमुख विनिर्माता कंपनियों का कारोबारी मनोबल बढ़ा। ऐसा विश्लेषकों की इस चिंता के बावजूद हुआ कि पश्चिम एशिया संघर्ष कारोबारी माहौल बिगाड़ सकता है। बैंक ऑफ जापान ने बुधवार को अपने ताज़ा त्रैमासिक तांकान सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए। बड़े विनिर्माताओं का मनोबल सूचकांक पिछले सर्वेक्षण से 5 अंक अधिक धनात्मक 22 पर रहा। धनात्मक संख्या दर्शाती है कि कारोबारी माहौल

1,000 येन से बढ़कर 3,000 येन यानी करीब 18 डॉलर हो गया है। जापानी नागरिकों सहित जापान से रवाना होने वाले सभी यात्रियों को ये कर देना होता है। ये शुल्क बुधवार से खरीदे जाने वाली हवाई, क्रूज और अन्य टिकटों की कीमतों में जोड़ा जाएगा। इस कर से सरकार प्रतिवर्ष लगभग 50 अरब येन यानी 30.8 करोड़ डॉलर का राजस्व कमाती आई है। कर में वृद्धि से सरकार को हर साल लगभग 120 अरब येन या 73.9 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। सरकार अत्यधिक पर्यटन की चुनौती और विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग करना चाहती है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमेरिका और ईरान के वार्ताकार मध्यस्थों के साथ बातचीत करने के लिए कतर में हैं, लेकिन अब तक इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से प्रत्यक्ष वार्ता करेंगे। एक अमरीकी अधिकारी ने एनएचके को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरिड कुशनर कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात करेंगे। अधिकारी ने बताया कि अमरीकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल बुधवार को कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों के साथ अलग अलग वार्ता करेंगे। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल कतर के मध्यस्थों से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि वे समझौता ज्ञापन के कुछ हिस्सों को लागू करने पर चर्चा करेंगे, जिसमें ईरान की जब्त परिसंपत्तियां मुक्त करने से संबंधित प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने एक बार फिर बल दिया कि अगले कुछ दिनों में अमरीकी पक्ष के साथ कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। आव्रजन नियमों की समीक्षा के तहत अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में जन्मे कुछ बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया है। अदालत ने मंगलवार को अपने फैसले में लिखा कि अमरीका में पैदा हुए सभी बच्चे नागरिकता के हकदार हैं, भले ही उनके माता पिता देश में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे हों। जापान के पर्यावरण मंत्रालय ने भालुओं की आबादी का सटीक अनुमान लगाने के लिए एकीकृत सर्वेक्षण पद्धति अपनाई है, जिसमें स्वचालित कैमरों का उपयोग किया जाएगा। ये कदम भालुओं के हमलों में हताहतों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उठाया गया है। अब तक विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण के अलग अलग तरीके अपनाए जाते रहे हैं, जैसे कि जाल में मिले बालों का विश्लेषण और शिकारियों से पहाड़ों में भालू देखे जाने के बारे में पूछताछ इत्यादि। सर्वेक्षण का समय और आवृत्ति भी अलग अलग रही है। मंत्रालय ने मंगलवार से उत्तरी जापान स्थित तोहोकु क्षेत्र के सभी 6 प्रीफेक्चरों आओमोरी, आकिता, इवाते, यामागाता, मियागी, फुकुशिमा और नीगाता के कुछ हिस्सों में कैमरे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत मंत्रालय के अधिकारियों ने सेंदाई शहर के एक जंगल में एक पेड़ पर कैमरा और उसके सेंसर लगाए। उन्होंने भालुओं को लुभाने के लिए वहां शहद भी रखा। कैमरों से ली गई फुटेज में भालुओं की संख्या गिनकर उनकी आबादी का अनुमान लगाया जाएगा। इन एशियाई काले भालुओं की पहचान उनके सीने पर मौजूद खास निशानों से की जा सकती है। मंत्रालय अगले साल मार्च में नतीजे जारी करना चाहता है। मंत्रालय 4 वर्षों के भीतर देश भर के उन सभी क्षेत्रों में सर्वेक्षण करना चाहता है जहां भालू रहते हैं।
2: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई की 3 दिवसीय भारत यात्रा बुधवार से शुरू हो गई है। वे बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। दोनों के बीच सीएनजी वाहनों में बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के एक नए ढांचे पर सहमति बनने की उम्मीद है। गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य भारत के कृषि प्रधान गांवों को बढ़ावा देते हुए जापानी वाहन निर्माताओं के लिए बाजार का विस्तार करना है। दोनों देश

0: मिलकर भारत में 1,000 स्थानों पर बायोगैस संयंत्र लगाएंगे और बायोगैस उत्पादकता में सुधार के लिए अनुसंधान तथा विकास करेंगे। जापान में बुधवार से प्रस्थान कर प्रभावी रूप से 1,000 येन से बढ़कर 3,000 येन यानी करीब $18 हो गया है। जापानी नागरिकों सहित जापान से रवाना होने वाले सभी यात्रियों को ये कर देना होता है। ये शुल्क बुधवार से खरीदे जाने वाली हवाई, क्रूज और अन्य टिकटों की कीमतों में जोड़ा जाएगा। इस कर से सरकार प्रतिवर्ष लगभग 50 अरब येन यानी $30.8 करोड़ का राजस्व कमाती आई है। कर में वृद्धि से सरकार को हर साल लगभग 120 अरब येन या $73.9 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। सरकार अत्यधिक पर्यटन की चुनौती और विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग करना चाहती है।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाए, नागानो वा दो देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देस। शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने मिया से कहा,
2: お帰りなさい。
1: आओ आओ।
2: 長野はどうでしたか？
1: नागानो कैसा रहा?
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: すごく楽しかったです。
1: बहुत मजा आया।
3: शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता।
1: खूब तस्वीरें खींची।
3: सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता।
1: उसके बाद सोबा भी खाया।
3: तोतेमो ओइशिकत्ता देस।
1: बहुत स्वादिष्ट था।
0: ये सुनकर हारूजी ने कहा,
2: सो देस का।
1: अच्छा।
2: योकात्ता देस ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: मिया ने आगे कहा,
3: नागानो नो हितो वा तोतेमो शिनसेत्स देशिता।
1: नागानो के लोग बहुत भले थे।
0: फिर ताम ने कहा,
4: तनोशी ल्योकोह देशिता ने।
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
0: दोस्तों, मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु,
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: すごく
0: का अर्थ है बहुत और
5: तानोशिकत्ता देसु
0: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
0: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: तानोशी
0: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: कत्ता।
1: तो
5: तानोशी देसु
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: तानोशिकत्ता देसु
1: यानी मजेदार था।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
5: तानोशिकत्ता देसु, सुगोकु

0: かったです。
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण.
0: おいしかったです。
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था. ये
0: おいしいです
1: का भूतकाल रूप है. इसके अलावा
0: よかったです
1: भी है जो
0: いいです
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है.
2: いいです का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है. ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए.
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की. इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का दिस हटाकर देशता लगाते हैं.
2: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं. संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
0: शिनसेत्सुना
2: यानी भला. जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
0: शिनसेत्सु देस. शिनसेत्सु देस
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं तो बन जाएगा
0: शिनसेत्सु देशता.
2: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
0: तानोशी ryokou desu
2: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
0: तानोशी ryokou deshita.
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है.
3: 大阪はどうでしたか？
4: よかったです。とても賑やかでした。
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ. पहले महिला ने पूछा,
3: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪कैसा रहा?
0: 大阪
2: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है.
0: दो
2: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देशता यानी था या रहा. इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है.
1: पुरुष ने उत्तर दिया
4: योकात्ता देस
2: अच्छा रहा.
1: याद रखिएगा
0: योकात्ता
1: ई विशेषण
0: ई
1: का भूतकाल रूप है. पुरुष ने आगे कहा
4: तोतेमो निगियाका देशता
2: बहुत चहल पहल थी.
0: とても
1: का अर्थ है बहुत.
0: にぎやかでした
1: है ना विशेषण.
0: にぎやかな
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप.
2: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए.
0: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए. मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
0: सुबाराशी. सुबाराशी
4: सुबाराशिकात्ता देसु.
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारू जी की पंक्ति है. आप भी याद कर लीजिए.
5: ओकाएरी नासाई.
0: ओकाएरी नासाई
1: एक अभिवादन है. जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं. इसका अनौपचारिक रूप है
0: ओकाएरी,
1: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं. और इसका बहुत औपचारिक रूप है
0: ओकाएरी नासाईमासे,
1: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं.
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं.
5: ओकाएरी नासाई. नागानो वा दोउ देशिता का?
6: सुगोकु तानोशिकात्ता देसु. शाशिन वो ताकुसान तोरिमाशिता. सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता. とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
6: 長野の人はとても親切でした。
7: 楽しい旅行でしたね。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
2: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ. ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी. टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
1: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
2: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
1: जैसे क्योतो टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
2: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 1 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई की 3 दिवसीय भारत यात्रा बुधवार से शुरू हो गई है। वे बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। दोनों के बीच सीएनजी वाहनों में बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के एक नए ढांचे पर सहमति बनने की उम्मीद है। गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य भारत के कृषि प्रधान गांवों को बढ़ावा देते हुए जापानी वाहन निर्माताओं के लिए बाजार का विस्तार करना है। दोनों देश मिलकर भारत में 1000 स्थानों पर बायोगैस संयंत्र लगाएंगे और बायोगैस उत्पादकता में सुधार के लिए अनुसंधान तथा विकास करेंगे। जापान में कारोबार पर पैनी नजर रखने वाले तांकान सर्वेक्षण से पता चला है कि लगातार 5वीं तिमाही में प्रमुख विनिर्माता कंपनियों का कारोबारी मनोबल बढ़ा। ऐसा विश्लेषकों की इस चिंता के बावजूद हुआ कि पश्चिम एशिया संघर्ष कारोबारी माहौल बिगाड़ सकता है। बैंक ऑफ जापान ने बुधवार को अपने ताज़ा त्रैमासिक तांकान सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए। बड़े विनिर्माताओं का मनोबल सूचकांक पिछले सर्वेक्षण से 5 अंक अधिक धनात्मक 22 पर रहा। धनात्मक संख्या दर्शाती है कि कारोबारी माहौल को लेकर निराशावादी सोच रखने वाली कंपनियों की तुलना में आशावादी कंपनियों की संख्या अधिक है। सर्वेक्षण में लगभग 9000 कंपनियों को शामिल किया गया। AI और चिप संबंधी उपकरणों की मजबूत मांग के चलते मशीनरी क्षेत्र में विश्वास बढ़ा। इसके विपरीत पश्चिम एशिया के हालातों के कारण पेट्रोलियम और कोयला क्षेत्र में बाजार का मनोबल गिरा, लेकिन कुल मिलाकर इसका सूचकांक पर ना के बराबर प्रभाव पड़ा। बड़े गैर विनिर्माताओं का सूचकांक 5 तिमाहियों में पहली बार 1 अंक की वृद्धि के साथ धनात्मक 37 पर पहुंच गया। जापान में बुधवार से प्रस्थान कर प्रभावी रूप से

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमेरिका और ईरान के वार्ताकार मध्यस्थों के साथ बातचीत करने के लिए कतर में हैं, लेकिन अब तक इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से प्रत्यक्ष वार्ता करेंगे। एक अमरीकी अधिकारी ने एनएचके को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरिड कुशनर कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात करेंगे। अधिकारी ने बताया कि अमरीकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल बुधवार को कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों के साथ अलग अलग वार्ता करेंगे। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल कतर के मध्यस्थों से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि वे समझौता ज्ञापन के कुछ हिस्सों को लागू करने पर चर्चा करेंगे, जिसमें ईरान की जब्त परिसंपत्तियां मुक्त करने से संबंधित प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने एक बार फिर बल दिया कि अगले कुछ दिनों में अमरीकी पक्ष के साथ कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। आव्रजन नियमों की समीक्षा के तहत अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में जन्मे कुछ बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया है। अदालत ने मंगलवार को अपने फैसले में लिखा कि अमरीका में पैदा हुए सभी बच्चे नागरिकता के हकदार हैं, भले ही उनके माता पिता देश में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे हों। जापान के पर्यावरण मंत्रालय ने भालुओं की आबादी का सटीक अनुमान लगाने के लिए एकीकृत सर्वेक्षण पद्धति अपनाई है, जिसमें स्वचालित कैमरों का उपयोग किया जाएगा। ये कदम भालुओं के हमलों में हताहतों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उठाया गया है। अब तक विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण के अलग अलग तरीके अपनाए जाते रहे हैं, जैसे कि जाल में मिले बालों का विश्लेषण और शिकारियों से पहाड़ों में भालू देखे जाने के बारे में पूछताछ इत्यादि। सर्वेक्षण का समय और आवृत्ति भी अलग अलग रही है। मंत्रालय ने मंगलवार से उत्तरी जापान स्थित तोहोकु क्षेत्र के सभी 6 प्रीफेक्चरों आओमोरी, आकिता, इवाते, यामागाता, मियागी, फुकुशिमा और नीगाता के कुछ हिस्सों में कैमरे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत मंत्रालय के अधिकारियों ने सेंदाई शहर के एक जंगल में एक पेड़ पर कैमरा और उसके सेंसर लगाए। उन्होंने भालुओं को लुभाने के लिए वहां शहद भी रखा। कैमरों से ली गई फुटेज में भालुओं की संख्या गिनकर उनकी आबादी का अनुमान लगाया जाएगा। इन एशियाई काले भालुओं की पहचान उनके सीने पर मौजूद खास निशानों से की जा सकती है। मंत्रालय अगले साल मार्च में नतीजे जारी करना चाहता है। मंत्रालय 4 वर्षों के भीतर देश भर के उन सभी क्षेत्रों में सर्वेक्षण करना चाहता है जहां भालू रहते हैं।
2: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए की 3 दिवसीय भारत यात्रा बुधवार से शुरू हो गई है। वे बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। दोनों के बीच सीएनजी वाहनों में बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के एक नए ढांचे पर सहमति बनने की उम्मीद है। गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य भारत के कृषि प्रधान गांवों को बढ़ावा देते हुए जापानी वाहन निर्माताओं के लिए बाजार का विस्तार करना है। दोनों देश मिलकर भारत में 1000 स्थानों पर बायोगैस संयंत्र लगाएंगे और बायोगैस उत्पादकता में सुधार के लिए अनुसंधान तथा विकास करेंगे। जापान में बुधवार से प्रस्थान कर प्रभावी रूप से 1000 येन से बढ़कर 3000 येन यानी करीब $18 हो गया है। जापानी नागरिकों सहित जापान से रवाना होने वाले सभी यात्रियों को ये कर देना होता है। ये शुल्क बुधवार से खरीदे जाने वाली हवाई, क्रूज और अन्य टिकटों की कीमतों में जोड़ा जाएगा। इस कर से सरकार प्रतिवर्ष लगभग 50 अरब येन यानी $30.8 करोड़ का राजस्व कमाती आई है। कर में वृद्धि से सरकार को हर साल लगभग 120 अरब

0: येन या 73.9 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। सरकार अत्यधिक पर्यटन की चुनौती और विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग करना चाहती है।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु। शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने मिया से कहा,
2: お帰りなさい。
1: आओ आओ।
2: 長野はどうでしたか？
1: 長野कैसा रहा？
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: すごく楽しかったです。
1: बहुत मजा आया।
3: शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता।
1: खूब तस्वीरें खींची।
3: सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता।
1: उसके बाद सोबा भी खाया।
3: तोतेमो ओइशिकत्ता देसु।
1: बहुत स्वादिष्ट था।
0: ये सुनकर हारूजी ने कहा,
2: सो देसु का?
1: अच्छा।
2: योकात्ता देसु ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: मिया ने आगे कहा,
3: नागानो नो हितो वा तोतेमो शिनसेत्सु देशिता।
1: नागानो के लोग बहुत भले थे।
0: फिर ताम ने कहा,
4: तनोशी ल्योकोउ देशिता ने।
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
0: दोस्तों, मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु,
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: すごく
0: का अर्थ है बहुत और
5: तानोशिकत्ता देसु
0: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
0: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: तानोशी
0: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: कत्ता।
1: तो
5: तानोशी देसु
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: तानोशिकत्ता देसु
1: यानी मजेदार था।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
5: तानोशिकत्ता देसु, すごく तानोशिकत्ता देसु।
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण।
5: ओइशिकत्ता देसु,
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था। ये
5: ओइशी देसु
1: का भूतकाल रूप है। इसके अलावा
5: योकात्ता देसु
1: भी है, जो
5: ई देसु
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है।
0: ई देस का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए।
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की। इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का देस हटाकर देशता लगाते हैं।
0: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
5: शिनसेत्सुना
0: यानी भला। जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
5: शिनसेत्सु देसु, शिनसेत्सु देसु
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं, तो बन जाएगा
5: शिनसेत्सु देशता।
0: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
5: तानोशी ल्योकोउ देसु
0: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
5: तानोशी ल्योकोउ देशिता।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
6: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
2: ओसाका वा दो देश्टा का?
1: ओसाका कैसा रहा?
5: ओसाका
0: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
5: दो
0: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देश्टा, यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया,
6: योकात्तो देस,
0: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा,
5: योकात्ता
1: ई विशेषण
5: ई
1: का भूतकाल रूप है। पुरुष ने आगे कहा,
6: तोतेमो निगियाका देश्टा,
0: बहुत चहल पहल थी।
5: तोतेमो
1: का अर्थ है बहुत,
5: निगियाका देश्टा
1: है ना विशेषण,
5: निगियाका ना
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
0: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्टा का? योकात्ता देस। तोतेमो निगियाका देश्टा।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
5: सुबाराशी, सुबाराशी।
6: सुबाराशिकात्ता देस।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारू जी की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: ओकाएरी नासाई
1: एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
5: ओकाएरी,
1: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं। और इसका बहुत औपचारिक रूप है
5: ओकाएरी नासाइमासे,
1: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देश्टा का?
3: सुगोकु तानोशिकात्ता देस। शाशिन ओ ताकुसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
1: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं, जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
0: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
1: जैसे क्योतो टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
0: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये खबरें एनएच केवल जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। अमरीकी और ईरानी मुजाकरात कार सालिसों के साथ बातचीत के लिए कतर में हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि दोनों फरीक बिलमुशाफा बातचीत करेंगे। एक अमरीकी अहदेदार ने एनएचके को बताया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात करेंगे। अहदेदार ने बताया कि अमरीकी और ईरानी वफूद बुध को कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से अलग अलग बातचीत करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि उनके मुल्क का वफद कतरी सालिसों से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि वो मुफाहमत की याददाश्त के कुछ हिस्सों बशमूल ईरान के मुंजमद असासों के इजरा पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर भी जोर दिया कि अगले चंद दिनों में अमरीकी फरीक के साथ किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के हवाले से दबाव बढ़ाने के एक हिस्से के तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में पैदा होने वाले कुछ बच्चों के लिए खुदकार पैदाइशी हक के शहरियत खत्म करने की कोशिश की थी। ताहम अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया है। अदालत ने मंगल के रोज अपने फैसले में लिखा कि शहरियत के हक का इतलाक अमरीका में पैदा होने वाले तमाम बच्चों पर यकसां होता है, चाहे उनके वालदैन मुल्क में गैर कानूनी तौर पर या आर्जी तौर पर ही मौजूद क्यों ना हों। जापान की वजारत माहौलियात ने रीछों की तादाद का ज्यादा दुरुस्त अंदाजा लगाने के लिए खुदकार कैमरों का इस्तेमाल करते हुए यकसां सर्वे का तरीका शुरू किया है। ये इकदाम इस जानवर के हमलों से हलाकतों की बढ़ती हुई तादाद के तनाजुर में सामने आया है। अब तक मुख्तलिफ खित्तों में सर्वे के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते रहे हैं, जिनमें फंदों में पाए जाने वाले बालों का तजिया करना और शिकारियों से पहाड़ों में रीछ के देखे जाने के बारे में पूछना शामिल हैं। सर्वे के औकात और तवातर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हुआ करते थे। वजारत ने मंगल के रोज शुमाली जापान के तोहोक खित्ते के तमाम 6 प्रीफेक्चरों आओमोरी, अकीता, इवाते, यामागाता, मियागी, फुकुशिमा और निगाता के कुछ हिस्सों में कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वजारत के अहलकारों को सेंदाई शहर के एक जंगल में एक दरख्त पर कैमरा लगाते और उसके सेंसरों को एडजस्ट करते हुए देखा गया। उन्होंने शहद भी चारे के तौर पर वहां रखा। एशियाई काले रीछों की तादाद का अंदाजा उन्हें गिनकर लगाया जाएगा, जिनकी शनाख्त कैमरों के जरिए ली गई फुटेज में उनके सीने के मुनफरिद निशानात से की जा सकती है। रवा माली साल में यह सर्वे अक्टूबर के आसपास तक जारी रहेगा। वजारत ने रीछ के मस्कनों के मुताबिक सर्वे के इलाकों को 6 ब्लॉक्स में तकसीम किया है। जंगलात और शहरी इलाकों में कुल तकरीबन 800 कैमरे लगाए जाएंगे। वजारत अगले साल मार्च में नतायज जारी करने का इरादा रखती है। मंसूबे के मुताबिक आइंदा 4 वर्षों में मुल्क भर के उन तमाम इलाकों का सर्वे किया जाएगा जहां रीछ पाए जाते हैं। वजारत के एक अहलकार ने कहा कि वो रीछ की आबादी का दुरुस्त तयन करने और इस सर्वे के नतायज का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला करने के लिए पुरुम्मीद हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में कितने रीछों को पकड़ने की जरूरत है।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापानी वजीर आजम ताकायची सनाए ने आज बुध के रोज से नई दिल्ली का 3 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। वो जुमेरात को अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। और जापान में तवज्जो से देखे जाने वाले एक कारोबारी सर्वे से पता चलता है कि बड़े मसनूआत साजों के कारोबारी एतमाद में मुसलसल 5वें सेमाही में बेहतरी आई है। ये बेहतरी तजियाकारों के इन खदशात के बावजूद हुई है कि मशरक़ वस्ता का तनाज़ा कारोबारी रुझान को ख़राब कर देगा। और जापान ने रवानगी टैक्स 1000 येन से बढ़ाकर 3000 येन या तकरीबन $18 कर दिया है, जो बुध से नाफिजुल अमल हो गया है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 1 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई की 3 दिवसीय भारत यात्रा बुधवार से शुरू हो गई है। वे बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। दोनों के बीच सीएनजी वाहनों में बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के एक नए ढांचे पर सहमति बनने की उम्मीद है। गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य भारत के कृषि प्रधान गांवों को बढ़ावा देते हुए जापानी वाहन निर्माताओं के लिए बाजार का विस्तार करना है। दोनों देश मिलकर भारत में 1000 स्थानों पर बायोगैस संयंत्र लगाएंगे और बायोगैस उत्पादकता में सुधार के लिए अनुसंधान तथा विकास करेंगे। जापान में कारोबार पर पैनी नजर रखने वाले तांकान सर्वेक्षण से पता चला है कि लगातार 5वीं तिमाही में प्रमुख विनिर्माता कंपनियों का कारोबारी मनोबल बढ़ा। ऐसा विश्लेषकों की इस चिंता के बावजूद हुआ कि पश्चिम एशिया संघर्ष कारोबारी माहौल बिगाड़ सकता है। बैंक ऑफ जापान ने बुधवार को अपने ताज़ा त्रैमासिक तांकान सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए। बड़े विनिर्माताओं का मनोबल सूचकांक पिछले सर्वेक्षण से 5 अंक अधिक धनात्मक 22 पर रहा। धनात्मक संख्या दर्शाती है कि कारोबारी माहौल को लेकर निराशावादी सोच रखने वाली कंपनियों की तुलना में आशावादी कंपनियों की संख्या अधिक है। सर्वेक्षण में लगभग 9000 कंपनियों को शामिल किया गया। AI और चिप संबंधी उपकरणों की मजबूत मांग के चलते मशीनरी क्षेत्र में विश्वास बढ़ा। इसके विपरीत पश्चिम एशिया के हालातों के कारण पेट्रोलियम और कोयला क्षेत्र में बाजार का मनोबल गिरा, लेकिन कुल मिलाकर इसका सूचकांक पर ना के बराबर प्रभाव पड़ा। बड़े गैर विनिर्माताओं का सूचकांक 5 तिमाहियों में पहली बार 1 अंक की वृद्धि के साथ धनात्मक 37 पर पहुंच गया। जापान में बुधवार से प्रस्थान कर प्रभावी रूप से 1000 येन से बढ़कर 3000 येन यानी करीब $18 हो गया है। जापानी नागरिकों सहित जापान से रवाना होने वाले सभी यात्रियों को ये कर देना होता है। ये शुल्क बुधवार से खरीदे जाने वाली हवाई, क्रूज और अन्य टिकटों की कीमतों में जोड़ा जाएगा। इस कर से सरकार प्रतिवर्ष लगभग 50 अरब येन यानी $30.8 करोड़ का राजस्व कमाती आई है। कर में वृद्धि से सरकार को हर साल लगभग 120 अरब येन या $73.9 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। सरकार अत्यधिक पर्यटन की चुनौती और विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग करना चाहती है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमेरिका और ईरान के वार्ताकार मध्यस्थों के साथ बातचीत करने के लिए कतर में हैं, लेकिन अब तक इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से प्रत्यक्ष वार्ता करेंगे। एक अमरीकी अधिकारी ने एनएचके को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरिड कुशनर कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात करेंगे। अधिकारी ने बताया कि अमरीकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल बुधवार को कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों के साथ अलग अलग वार्ता करेंगे। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल कतर के मध्यस्थों से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि वे समझौता ज्ञापन के कुछ हिस्सों को लागू करने पर चर्चा करेंगे, जिसमें ईरान की जब्त परिसंपत्तियां मुक्त करने से संबंधित प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने एक बार फिर बल दिया कि अगले कुछ दिनों

0: इसमें स्वचालित कैमरों का उपयोग किया जाएगा। ये कदम भालुओं के हमलों में हताहतों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उठाया गया है। अब तक विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण के अलग अलग तरीके अपनाए जाते रहे हैं, जैसे कि जाल में मिले बालों का विश्लेषण और शिकारियों से पहाड़ों में भालू देखे जाने के बारे में पूछताछ इत्यादि। सर्वेक्षण का समय और आवृत्ति भी अलग अलग रही है। मंत्रालय ने मंगलवार से उत्तरी जापान स्थित तोहोकु क्षेत्र के सभी 6 प्रीफेक्चरों आओमोरी, आकिता, इवाते, यामागाता, मियागी, फुकुशिमा और नीगाता के कुछ हिस्सों में कैमरे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत मंत्रालय के अधिकारियों ने सेंदाई शहर के एक जंगल में एक पेड़ पर कैमरा और उसके सेंसर लगाए। उन्होंने भालुओं को लुभाने के लिए वहां शहद भी रखा। कैमरों से ली गई फुटेज में भालुओं की संख्या गिनकर उनकी आबादी का अनुमान लगाया जाएगा। इन एशियाई काले भालुओं की पहचान उनके सीने पर मौजूद खास निशानों से की जा सकती है। मंत्रालय अगले साल मार्च में नतीजे जारी करना चाहता है। मंत्रालय 4 वर्षों के भीतर देश भर के उन सभी क्षेत्रों में सर्वेक्षण करना चाहता है जहां भालू रहते हैं।
1: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई की 3 दिवसीय भारत यात्रा बुधवार से शुरू हो गई है। वे बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। दोनों के बीच सीएनजी वाहनों में बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के एक नए ढांचे पर सहमति बनने की उम्मीद है। गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य भारत के कृषि प्रधान गांवों को बढ़ावा देते हुए जापानी वाहन निर्माताओं के लिए बाजार का विस्तार करना है। दोनों देश मिलकर भारत में 1000 स्थानों पर बायोगैस संयंत्र लगाएंगे और बायोगैस उत्पादकता में सुधार के लिए अनुसंधान तथा विकास करेंगे। जापान में बुधवार से प्रस्थान कर प्रभावी रूप से 1000 येन से बढ़कर 3000 येन यानी करीब $18 हो गया है। जापानी नागरिकों सहित जापान से रवाना होने वाले सभी यात्रियों को ये कर देना होता है। ये शुल्क बुधवार से खरीदे जाने वाली हवाई, क्रूज और अन्य टिकटों की कीमतों में जोड़ा जाएगा। इस कर से सरकार प्रतिवर्ष लगभग 50 अरब येन यानी $30.8 करोड़ का राजस्व कमाती आई है। कर में वृद्धि से सरकार को हर साल लगभग 120 अरब येन या $73.9 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। सरकार अत्यधिक पर्यटन की चुनौती और विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग करना चाहती है।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाए, नागानो वा दो देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देस। शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने मिया से कहा,
2: お帰りなさい。
1: आओ आओ।
2: 長野はどうでしたか？
1: नागानो कैसा रहा?
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: すごく楽しかったです。
1: बहुत मजा आया।
3: 写真をたくさん撮りました。
1: खूब तस्वीरें खींची।

0: それからお蕎麦も食べました。
1: उसके बाद सोबा भी खाया।
0: とても美味しかったです。
1: बहुत स्वादिष्ट था।
2: ये सुनकर हारू जी ने कहा,
3: そうですか。
1: अच्छा।
3: よかったですね。
1: ये तो अच्छी बात है।
2: मिया ने आगे कहा,
0: नागानो の人はとても親切でした。
1: नागानो के लोग बहुत भले थे।
2: फिर ताम ने कहा,
4: 楽しい旅行でしたね。
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
2: दोस्तों, मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है
0: すごく楽しかったです।
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
2: इस वाक्य में
5: すごく
2: का अर्थ है बहुत और
5: たのしかったです
2: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
2: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: たのしい
2: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: かった।
1: तो
5: たのしい です
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: たのしかった です
1: यानी मजेदार था।
2: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि काता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
5: たのしかった です すごく楽しかったです।
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण।
5: おいしかったです
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था। ये
5: おいしいです
1: का भूतकाल रूप है। इसके अलावा
5: よかったです
1: भी है जो
5: いいです
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है।
2: いいです का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए।
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की। इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का दिस हटाकर दिशता लगाते हैं।
2: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
5: शिनसेत्सुना
2: यानी भला। जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
5: しんせつです
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं, तो बन जाएगा
5: しんせつでした।
2: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
5: たのしい旅行です
2: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
5: たのしい旅行でした।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
6: ओसाका वा दो देशिता का?
7: योकात्ता देस। तोतेमो निगियाका देशिता।
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
6: ओसाका वा दो देशिता का?
1: ओसाका कैसा रहा?
5: ओसाका
2: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
5: दो
2: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देशता यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया
7: योकात्ता देस,
2: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा
5: योकात्ता
1: ई विशेषण
5: ई
1: का भूतकाल रूप है। पुरुष ने आगे कहा
7: तोतेमो निगियाका देशिता,
2: बहुत चहल पहल थी।
5: とても
1: का अर्थ है बहुत।
5: にぎやかでした देशिता
1: है ना विशेषण
5: にぎやかな
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
2: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देशिता का? よかったです。とてもにぎやかでした。

0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
1: सुबाराशी, सुबाराशी।
2: सुबाराशिकात्ता देसु।
3: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारू जी की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
4: ओकाएरी नासाई,
1: ओकाएरी नासाई
0: एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
1: ओकाएरी,
0: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं, और इसका बहुत औपचारिक रूप है
1: ओकाएरी नासाइमासे,
0: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
3: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
4: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देशिता का?
5: सुगोकु तानोशिकात्ता देसु। शाशिन ओ ताकुसान तोरिमाशिता। सोरे कारा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
4: そうですか。よかったですね。
5: 長野の人はとても親切でした。
6: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
3: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
0: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं, जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
3: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
0: जैसे क्योतो टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
3: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें एनएच केवल जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। अमरीकी और ईरानी मुजाकरात कार सालिसों के साथ बातचीत के लिए कतर में हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि दोनों फरीक बिलमुशाफा बातचीत करेंगे। एक अमरीकी अहदेदार ने एनएचके को बताया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात करेंगे। अहदेदार ने बताया कि अमरीकी और ईरानी वफूद बुध को कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से अलग अलग बातचीत करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि उनके मुल्क का वफद कतरी सालिसों से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि वो मुफाहमत की याददाश्त के कुछ हिस्सों बशमूल ईरान के मुंजमद असासों के इजरा पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर भी जोर दिया कि अगले चंद दिनों में अमरीकी फरीक के साथ किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के हवाले से दबाव बढ़ाने के एक हिस्से के तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में पैदा होने वाले कुछ बच्चों के लिए खुदकार पैदाइशी हक के शहरियत खत्म करने की कोशिश की थी। ताहम अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया है। अदालत ने मंगल के रोज अपने फैसले में लिखा कि शहरियत के हक का इतलाक अमरीका में पैदा होने वाले तमाम बच्चों पर यकसां होता है, चाहे उनके वालदैन मुल्क में गैर कानूनी तौर पर या आर्जी तौर पर ही मौजूद क्यों ना हों।

0: जापान की वजारत माहौलियात ने रीछों की तादाद का ज्यादा दुरुस्त अंदाजा लगाने के लिए खुदकार कैमरों का इस्तेमाल करते हुए यकसां सर्वे का तरीका शुरू किया है। ये इकदाम इस जानवर के हमलों से हलाकतों की बढ़ती हुई तादाद के तनाजुर में सामने आया है। अब तक मुख्तलिफ खित्तों में सर्वे के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते रहे हैं, जिनमें फंदों में पाए जाने वाले बालों का तज्जिया करना और शिकारियों से पहाड़ों में रीछ के देखे जाने के बारे में पूछना शामिल हैं। सर्वे के औकात और तवातर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हुआ करते थे। वजारत ने मंगल के रोज शुमाली जापान के तोहोक खित्ते के तमाम 6 प्रीफेक्चरों आओमोरी, अकीता, इवाते, यामागाता, मियागी, फुकुशिमा और निगाता के कुछ हिस्सों में कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वजारत के अहलकारों को सेंदाई शहर के एक जंगल में एक दरख्त पर कैमरा लगाते और उसके सेंसरों को एडजस्ट करते हुए देखा गया। उन्होंने शहद भी चारे के तौर पर वहां रखा। एशियाई काले रीछों की तादाद का अंदाजा उन्हें गिनकर लगाया जाएगा, जिनकी शनाख्त कैमरों के जरिए ली गई फुटेज में उनके सीने के मुनफरिद निशानात से की जा सकती है। रवां माली साल में यह सर्वे अक्टूबर के आसपास तक जारी रहेगा। वजारत ने रीछ के मस्कनों के मुताबिक सर्वे के इलाकों को 6 ब्लॉक्स में तकसीम किया है। जंगलात और शहरी इलाकों में कुल तकरीबन 800 कैमरे लगाए जाएंगे। वजारत अगले साल मार्च में नतायज जारी करने का इरादा रखती है। मंसूबे के मुताबिक आइंदा 4 वर्षों में मुल्क भर के उन तमाम इलाकों का सर्वे किया जाएगा जहां रीछ पाए जाते हैं। वजारत के एक अहलकार ने कहा कि वो रीछ की आबादी का दुरुस्त तयन करने और इस सर्वे के नतायज का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला करने के लिए पुरुम्मीद हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में कितने रीछों को पकड़ने की जरूरत है।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जापानी वजीर आजम ताकायची सनाए ने आज बुध के रोज से नई दिल्ली का 3 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। वो जुमेरात को अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। और जापान में तवज्जो से देखे जाने वाले एक कारोबारी सर्वे से पता चलता है कि बड़े मसनूआत साजों के कारोबारी एतमाद में मुसलसल 5वें सेमाही में बेहतरी आई है। ये बेहतरी तजियाकारों के इन खदशात के बावजूद हुई है कि मशरक वस्ता का तनाज़ा कारोबारी रुझान को ख़राब कर देगा। और जापान ने रवानगी टैक्स 1000 येन से बढ़ाकर 3000 येन या तकरीबन $18 कर दिया है, जो बुध से नाफिजुल अमल हो गया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है nhk.jp/urdu।